बाप के छिटके के शेर छिटे गुरु बाप के छिटके शेर छिटे गुरु अंगद की से पूरे गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे।

हमारी जेवा एक प्रभु हर के गुण अगम अथा हम क्यों कर जपे हर तुम बड़ अगम अथा।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कहिया तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कहिया जेबा एक तू समर्थ बड़ा मेरी मत छोड़ी ना मेरी मत छोड़ी हम अज्ञान अल्प मत छोड़ी मत छोड़ी तू समर्थ बड़ा बड़ी हो बड़ा।

बटी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा, बटी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, अंत न अंता सदा दे अंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ ते उठान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावे ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हम अपराधी तुम बचाते, जिस पापी को मिले ना कोई, जिस पापी को मिले ना कोई, शरण आवे दान निर्मल।

0: जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श ले हो।
1: हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जबे आने हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुके मेल मिला,
1: हर कृपा कर सुन।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, पिन पिन सब हो कर जाना, एक रूप जिन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म परचुर एह

गुरु साजी दिवाजी सासवती हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहा। श्री राग का जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने सात और बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

तन है पूरे सतगुरु जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंद्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है हुण ताल बदल गया इस नु असीं दीपचंदी कहने हैं 14 सुर मात्र का ताल बदल गया है इस नु पड़ताल कहांगे और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, तिरना जो है ये सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार में वजदा है और दीन जड़ा है ये वचित्र वीणा में वजदा है, ये साजां दे विच दर्शन कराए ने।

तो मेरा भाव कहता है कि जेडे प्रचलित शब्द ने आप पढ़ लें जेडे औखे शब्द ने वह भी रागी सिंह पढ़ने चाहिए ने। हां जी, तो रागी सिंह इधर भी ध्यान देना चाहिए, संतान श्रवण करना चाहिए, रागी सिंह गायन करना चाहिए। आनंद साहब जड़ा है वह मर्यादा किवें पढ़न दी जोटियां की धारना पढ़ लें ना, यह मर्यादा नहीं। मर्यादा है राग रामकली दे विच और तीन घर दे विच पढ़ना, घर तीजा रामकली, तो उसका स्वरूप श्रवण करो जिवें साहिब आप नंसा पढ़ते हुंदे सी रामकली राग।

रावण गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले धर्म आपो अपने सारे जपो जिन्नी नाम सच्च नानक।

0: आदि गुरुये नमः जुगाद गुरुये सतगुरु
1: श्री गुरुदेव
0: गुरु बाबे फिटके से फिटे गुरु बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते कुआरे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी चिकिया गुर चौथी पीढ़ी चिकिया जिन निंदक दुष्ट सब तारिया जहान निंदक दुष्ट सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान।

हमारी जेहबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम बड अगम अथाह।

बड़ी हूँ बड़ा अपार तेरा मर्तबा, बड़ी हूँ बड़ा अपार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ ते रोथान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ ते रोथान, तेरो थान तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बचाते, किस पापी को मिले न कोई, किस पापी को मिले न कोई, शरण आवे दान निर्मल।

सहज से सार मिल जाए। कर्मी सहज नाज बजाए बिन सहज से सार न जाए, न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए, कित संजम तोता जाए मन तो

कुकुर के लोग बसेंगे तेई रेणी रे सोई दिल मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तर

छोटो वेश पेट चंद्राई दुबदा ए फल नाही मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर टूटत बहुत सुख पावे कर अमृत घट माही जियो जिस जाल ने कहा।

मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर चुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मुंह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा पर संग वखरा, साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीवन दा ढंग वखरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो गज।

हंस हंस के इतने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि पड़क उठे, पर उन्हां नूं की पता सी कि शांति दा सोमा जो संसार नूं शांति दा उपदेश देण वास्ते आया, उहदे सामने वड्डे वड्डे भांबड़ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ

तेरी रजा जिवें है वो परवान है, ओदे विच मैनू कोई हक नहीं के मैं कुछ हुक्म अदूली करा। ये एक संसार दे सामने नमूना पेश कीता है कि सिदक तो नहीं डोलना जालम, भावे जिन्ना मर्जी जुलम करदा, आखिर जित नाम सिमरन और सच दी हक दी हुंदी है। हजूर गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है, कूड़ निखुट्टै नानका ओड़क सच रही। ये झूठ दे बदल ये सदा अस्थिर नहीं रहिंदे, लेकिन सच दी आवाज सदियां तक बल्कि जुगां जुगांतरां तक बुलंद रहिंदी है। और उस सच दी रोशनी दे विच अनेकां ही राही उन्हां नूं मार्गदर्शन प्राप्त हुंदा है। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु दे भाणे विच किवें रहना है,

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनु समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नु तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तां ए भी कहंदे ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे साहिबजादे गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं जदों चंदू दे भेजे होए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारी दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी दीवारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोष कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने ए रिश्ता नहीं लैना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता। ते संगत दा हुक्म मन के गुरु पंचम पातशाह जी ने ए रिश्ता मोड़ दिता। अज चंदू नू ए वेला हथ आ गया कि समय दी हकूमत ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू गिरफ्तार करके चंदू दे हवाले कर दिता और चंदू ने अपना बदला लिया। ऐसी एक गाथा आउंदी है, पर असलियत यह है कि हकूमत नहीं सी चाहती सच दी आवाज बुलंद होवे, हकूमत नहीं सी चाहती कि लोग सच दी आवाज नू सुनन ते उस सच दे उत्ते चलन, क्योंकि सच उत्ते जे प्रजा चल पई ते बादशाह नू फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। उन्हें तौज के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ए जो झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस, जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ए दुकान बंद कर दित्ती जावे, जिस तों स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय दी हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच दी आवाज लोकां दे कन्नां तक पहुंचे, उस सच दी आवाज नूं बंद करना चाहुंदा सी और इस दा इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप ओ कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुलम करने शुरू कीते, चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता, पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नीं रखण लग्या, हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ते शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनण दा संदेश

नहीं तो फिर बई तू सोच ले, क्योंकि नाम जपण वालियां दे नेड़े जमदूत भी नहीं आ सकते, तो तू किवें आ जाएगा। ता जदों बाबा जी ने रोह दे विच खूंडा खड़काया तां इह नट लगा, भजन लगा, ते भजदा भजदा कहण लगा, मैं तुहानू हुणे ही दस देंदा कि मैं कितना बली हां, पर की करां, आ जिहड़ी सुखमनी दी बाणी तुसी पढ़दे सुणदे हो ना, इहदी इन्नी समर्थ है कि मैं आप दे नेड़े भी नहीं आ सकदा। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। ता बाबा जी मुस्कुरा पे, आख्या चंगा है कलयुग, तू अपना इलाज आप दस चले है भी मेनू सुखमनी तो डर लगदा। ता उस दिन सारी संगत नू बाबा जी ने वचन कर दिता, बई हुण आपा तुरा बनना है। सेवका ने आख्या गरीब निवाज, अलपग हां कुछ समझ नहीं लगी। आख्या जिवें गड्डे दे हेठां दोने पहियां दे विचाले तुरा होंदा है ना, इस तरह आपा तुरा बन

नाम बाणी दा तुरा बनना। सेवका ने आख्या जी सत बचन। बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज कर दे ना, हुन लगातार सुखमनी दी बाणी।

सुचेत होके नाम बाणी दा प्रवाह चलाया करो। ता उदो दा श्री सुखमनी साहिब दे पाठ, श्री अखंड पाठ, ब्यंत बाणी दे प्रवाह श्री नानक सर विखे चल रहे ने। संगतां आके अपनियां अरदासां कर दियां ने, बाबा जी दियां खुशियां लैंदी।

इन्हें मन विच सोचिया 50,000 रुपया दे देवांगा। बाबा जी हिरदे दी पट्टी वाच गए ते कहन लगे भी ये ता थोड़ी है। फिर मन विच कहंदा है 1,00,000 रुपया दे देंगा। उस वेले 1,00,000 बहुत हुंदा सी। ते बाबा जी ने फिर आख्या भी पेटा थोड़ी है, मां पुरखो जो मंगोगे देवांगा। आख्या बचन है जी महाराज। फिर आख्या बख्शी सिया सब तो पहला तू अमृत छक ले। रो के चरना ते गिर पिया। दुनिया दे महापुरख आए, कोई पैसे लै गया, सेवा लै गया, माया लै गया, पर ऐसे महापुरख जिन्हां ने मेनू तारन दा सोचिया ता चरना ते गिरिया महाराज बख्श लो। ता इसने भी अमृत छकिया ते होर इसनू देख के हजारा संगतां ने अमृत छकिया। ए सन बाबा जी दे तारन दे ढंग, नाम जपावण दे निराले ढंग सन बाबा जी दे। जो कोई भी आउंदा उसनू नाम जपाउं दे। ताई ता अज नाम जपिया जिथे बैसन साध जन सो।

संसार विच नित अवतार होंदे ने ते भुले भटके लोगां नूं मुड़ समत ला के वाहिगुरु नाल जोड़दे ने। ऐसे महापुरुषां दी